दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना उह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसारै ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सत गुर सत पुरखा बिनो करो गुर पासु

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासा, मिल संगत गुण परदास। जिन हर हर हर रास नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा,

मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल साध बल जाई है, तेरा अंत न परावरिया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा, सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुकत पाए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तपै जपै बेअंता, तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत सासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरता जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाउ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख

तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाणै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, पित सरवरड़ै पहिले निवासा। पाणी पावक तिन्हें किया, पंकुज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेतस मूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा।

एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा।

तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता, जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहावै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मुँह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने।

पौड़ी तिथै तू समर्थ जिथै कोए नाहे उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पौजल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे। जिनकौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

देखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम मोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, जोग व्यास करम त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मुद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करें बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौखंड पृथ्वी फिर चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वरभूम दान, न्योली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तो पी हो मैं मैल न जावै, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुट्टै, गर्भ गुमान न मन ते हुट्टै, सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साध न करै, मन ते कबहू न भिख्या टरै, जल धोवै बहु देहि अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतत बहुमूच, बहुत स्याणप जम का पौ व्याप।

नानक कहू न सिजई बिन नावे पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक पी न दे दस पी हिरले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कार जा क्या मन लागा प्रभु मीठा सर्ब सुख ताहु मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी देरास खात पीत बरतै अनद उलास अपनी मान कछ बाहर साहले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस्त किस आज्ञा राखे प्रभ की आज्ञा मानै माथै उसे चौगुण करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया सो रंग लावे ओह बिनसै ओह मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लपट रिहो तह अंध अंधार बटाऊ सो जो लावे ने ताको हाथ नया वै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्प वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं परोपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पए सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के निरार्थ दाम तन तन तेजन जह घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हा प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्मे मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया अपह माने अपह आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्याणप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थरंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जह प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जह प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिस को सिमरत परम गत पावे जह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याए सदा मन अंदर जह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याइए त्यावन जोग जह प्रसाद पाट पटंबर हडावे तिसै त्याग कत अवर लुभावे जह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ता का जस गावीजै जह प्रसाद तुझ सब कौ मान मुख ताको जस रसन मखान
जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पत सेती कर जाव है जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लाव हो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभता कै जय प्रसाद तुझको न पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभुचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आ भूखण पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्वहस्त अश्वारी मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई तिसै त्याई जो एक अलखै इहां उहां नानक तेरी रखै जय प्रसाद करै पुन्न बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जय प्रसाद सुनहै करण नाद जय प्रसाद पिखै बिस्माद जय प्रसाद बोलहै अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस कर चलहै जय प्रसाद संपूर्ण फलहै जय प्रसाद परमगत पावह जय प्रसाद सुख सहज समावह ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल अमनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावै साच री मन मेरे तू ता सिवराच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपहु कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ श्लोक अगम अगम

साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले। साध के संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतहूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग के सिउ नहीं बैर, साध के संग ना बीका पैर। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग ना कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर लह, साधु के संग अजर सह। साध के संग बसै थान ऊचे, साधु के संग महल पहुचे। साध के संग गृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सबको वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्ब थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कश काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निसरै। साध के संग लग्या प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट डीठा। साध संग पई आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक, ज्यों बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक जो पाव का सहज सुपाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी सेजन पए, नानक जिन प्रभ आप करे।
ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी क्या हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,

रूपरंग भय प्रकाश साध कै संग रच रचना अपनी कलधारी अनकबार नानक बलहारी सलोक साध सुना चल बिन भजन बिखया सगली छार हर हर नाम कमावना नानके तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमरन नाम आधार अवरो पाव सब मीत विसारो चरण कमल रिद मैं उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ एह तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंटे उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख कौन तवांश मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे फली करनी सा शोभा पज हर की शरणी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सरवण दान मैं हर नाम निधान जप नानक दर कै प्रवान मन प्रबोधो हर कै नाए दै दिश ताव त्यावै खाए ताको बिघन न लागै कोए जा कै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिनसै पूर्ण होए आस भगत भाया तुम प्रगास तित कर जाए बसै बनासी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गौन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पाव न छूट न हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक फल पाए संगमा चालस तेरा धाना तू क्याल पटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विचार इनते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातों ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जपो वरा नाम जपावो सुंत कैथ रहत कथ पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल ओहे अचिंत बसै सुख नाल सासगिरा सर नाम समाल छाड़ सियानब सगली मना साधु संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगाह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको साला एक सिमर एको मन यार एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पय एक राद प्रास्त गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलो।

फिर जा प्रष्टपदी। जब अकार ही कशन दृष्टिता पापम तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक शोक कहो किस व्यापत। जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करना हारना दूजा। जब होवत प्रभ केवल थनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो घनी। जब एक हर गम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुपाई तब शिव सकत कहो कित ठाई। जब आप है आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन जल पे आप करना हार नानक ठाकुर गम पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण को कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ नंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन पांदे। अपने आप ही चर जा नानके आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कब अंतर पतावे। करण करावन करना हार नानक करते का नाहे सोमार। जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत भाई। जय सर्व कला पै प्रवीन कै वेद देव कहां कहु चीन। जब अपने आप उर धारै तव सगन अप सगन कहां विचारै। जह अपनी ऊंचे अपने आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्मरे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय शाल शेद भेद समाया उहां किसे व्याप्त माया। आप सको आपै आदेश तेह गुण का नहीं प्रवेश। जह एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागै चिंता। जह आपन आप पतियारा तै कौन कथा कौन सुनै हारा। महो ब्यंत उठते उचा नानक आप सको आपै पहुचा। जह आप रचो पर पंच कार तेह गुण में किनो विस्थार। पाप पुनतै पे कहावत को नरक को सुरग वंशावत। आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देख खेल संकोचै तो नानक एक है। जय आपगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप। दोह पाख काया पै धनी उनकी शोभा उन्हो बनी। आपै कौत करे अंध चोज आपै रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तस अपन नहीं लावे जिस भावै तस खेल खिलावे। बेशुमार अगंत बोले ज्यो बुलावो त्यों नानक दास बोले सलोक। जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार नानके को पसरिया। दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। आपै एक आप विस्तार जां तिस भावै तां श्रेष्ठ उपाय। अपना पण रे समाए तुम ते पिन नहीं किस होए। अपन सोत सब जगत परोए जाको प्रभ जीओ आप बुझाए। सच नान सोई जन पाए सो समदर सी तत् का बेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता कै हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोई न मारै। सो मुआ जिस मनो बिसारै तिस ताजवर कहां को जाए। सब सरेक निरंजन राय जी की जोत जाके सब हाथ। अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत पार। नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। परत पालै जीन बहु भांत जो जो रचो तिसै त्यात। जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया नानक करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हारे कह नाए तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बन आई हुकम भूज परम पद पाई। एते उपरनी विचार जा कै मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पै निरवैर
अनदिन पूजें गुर के पैर, ए लोक सुखिए पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभा पह मेले। साध संग मिल करो नंद, गुण गावो प्र परमानंद, राम नाम तद करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण प्रण कह सुहाओ, आड़ पैर प्रापेखो नेरा, मिटै ज्ञान बिन सह अंधेरा, सुन परदेस हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पावो, हालत पलत दो लिहो सवार, राम नाम अंतर और तहार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच परीखिया, मन परनाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन के पौ जाए, सच वापार करो वापारी, दरगह निवह खेर तुम्हारी, एक आटे कर रखो मन माहे, नानक बहुर न आवे जाहे, तिस ते दूर कहां को जाय, उबरै राखन हार ते आए, मेरे पाओ जपै सगल पाओ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई ना पहुंचन हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक दाके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन फेख तो दृत श्रिष्ट, चरण कमल जाकी अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस

बटी सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक ने भी कृप हमारी प्रभु की उत्त करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहोत निधान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ओझ पाए स्थान बौर न होवे आव निजान हर तन खाट चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नम नित बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या ताप योग प्रव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शनान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कै मद सगल के उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एह निदान जपै मन कोय सब युग मैता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट पराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रव पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु जीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुलब देह तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से भय परम साध नाम निर्मलता के करम सब ते उच्चता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनी।

0: ਲੱਗੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿਨ ਸਕਤ ਕਹਿ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਣਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਭਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ ਅਦੇਸੰਗ ਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਕ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਧੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਣ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਭਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਣ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਜੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ नमो सर्वमाने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्ये नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ते विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अदो उर्ध अर्धं अगं ओगहर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्वं निर्णाते नमस्वं प्रमाते नमस्वं अगंजे नमस्वं अपंजे नमस्वं काले नमस्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद तव प्रसाद अमृत कर्मे अवृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद तव प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेक देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान नहीं कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बक्र फिरे चतुर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गणन पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अधीश धर्म ताम सु परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग नारंग जाकह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उत्सत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेयन पेख सर्व शास्त्र ना जानही जय रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही भोचित मधुपार छंद तव प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपौ प्रकाश निस्दन अनास आजान बाहु शाहान शाहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अभ अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वाभरणाढ्य अनदंड बाढ्य चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र प्रति चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से अदिश अदृश्य अकृश भगवती छंद तो प्रसाद कथते के आछिज देस के आभिज पेस के आगंज कर्म के आपंज परम के आभिज लोक के आदित सोक के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजन प्रभा है के धर्मं तुजा है के अशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुपौ अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुना है के शाहन शाह है के कारण पुनिंद है के रोजी देहिंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिस है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के अकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुस्नल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमें सुल सलाम है सलीखत मुदा मैं गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू अल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है। ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्व भागे सो सर्व अनुरागे त्रिपुत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, के नरकं प्रणास है, पृथ्वल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैवं सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है। निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनोकत स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है। चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अपय है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है। चरपट छंद तव प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता। सावल छंद तव प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरीख है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है। भगवती छंद तव प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमें सुलर वन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमेकुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है। मधुपार छंद तव प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हरनर प्रभंज अनगन प्रणाम।

करुणाकर हैं, विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणाकर हैं, अजप्पा जप हैं, अथप्पा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी तृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृतामृत हैं, अजब्बा कृत हैं, अमृतामृत हैं, निर्णायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्वपायक हैं, भावपंचन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सात रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी, नारागे नारंगे नारूपे नारेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तोल परनामे समस्तोल परनासे, अगंजल अनामे समस्तोल निवासे, निरकामंग विपूते समस्तोल स्वरूपे, कुकर्मंग परनासी सुतर्मंग विपूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग परनासी, करी मुल्को निंदा समस्तोल निवासी, अजायब विपूते गजायब गनी में, हरियंग करियंग करीमुल रही में, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, स्वयंभव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विपूते, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विपूते। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं तव प्रसाद सवैये, श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के, देख फिरो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे मत कौ न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के, मात्यम तंग जरेजर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे, कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे, भारी भुजान के भूप पली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे, एते पय तो कहां पय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखे, वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेखे, पौन आहार जति जत तार सबे सो विचार हजार के देखे, श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे, शुद्ध सिपा दुरंत दुबा सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बरे बड़े बरिया अविचार सार की धार पछैया, तोर देश मलिंद मवासन माते गिदान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हार सुबातन ही चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया, दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जोन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नित आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई हुए सहाय। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी का नाम जपया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अनडिट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंह संगणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां उतरवाईयां तन आरियां नाल चिरवाए सिखी कैसा सुवासा संग निभाही। तिना समूह सिंह संगणियां भुजंगियां सिदकवाना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चत्यावे चत्यावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत। देग तेग पते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केश दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल। धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा माननी वाह मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीओ। आप जी दे पवित्र चरणा कमलां विखे अरदास बेनती जोदड़ी है सतगुरु। आप जी ने कृपा कीती है दाता जी अमृत वेले अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दे तारे बख्शे ने दातिया। आप जी दा कोटान कोट शुकराना धन्नवाद है जी। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रहण सुख शांति नाल बतीत होई। अमृत वेले आप जी दी पावन हजूरी विखे अमृत मीह बाणियां श्री सुखमनी साहिब जप जाप सवैये चौपी आनंद साहिब जी दे पाठ कीते ने सतगुरु। आप जी दे दर कर दे टहलियां पासों बाणी दा पाठ करदे आं सेवावां निभाउंदे आं अनेकां होईयां पुल्लां बख्श देणियां जी। अगों वास्ते सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बाणी शुद्ध उचारण लई समत बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगतां दे हिरदयां विच वसाउणा जी। चढ़िया चार पैर देण सुख शांति नाल बतीत करौणा दाता जीओ। अपने दर घर दे नाल जोड़ी रखना नाम बाणी नाल प्यार बख्शिश करना सभना दे घरां विच सुख शांति बनाई रखनी दाता। गरीब नवाज सच्चे पातशाह सभना दे कारोबारां विच वाधे किरत कमाईयां च बरकतां पाओ तंदरुस्तियां बख्शो जी। आप जी दी पावन हजूरी विखे कड़ा प्रसाद दी देग हाजर आप जी दे दर प्रवान होवे। प्रवान होई देग संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शणी। पावन पवित्र हुक्मनामे बख्श के उपरंत श्री आसा दीवार दे कीर्तन दीवान आरंभ करन दी आग्या बख्शो। सही प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत।
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ।

जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहा। तीर्थ नाहे कहा सुच में सैल, मन कौ व्यापे हौ मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा फूल। बिन खाए बूझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख। काम क्रोध लोभ मोह प्या प्या,

गुरसु प्रसन्न हुए पौ गए, नाम निरंजन मन महलए, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सग

0: साहब जी ने कृपा कीती है। ये बहुत वड्डा समा हुंदा है, बड़ी वड्डी दात हुंदी है जदों दोहां परिवारां नूं संजोग प्रगट हुंदे हन, बच्चे बच्ची दे ते दोहे परिवार आपस च मिलदे हन ते किन्ने ही रिश्तेदार नाल जुड़ जांदे हन। जदों घर विच बच्चा जन्म लैंदा है उदों तो ही बच्चा बच्ची परिवारां दे मनां विच इस समें दी उड़ीक रहिंदी है। 25-30 साल तक उड़ीक करदे हन ते उस समां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे दोहां परिवारां नूं सतगुरां ने बख्शिश करके निवाजिया है। आप दोहां परिवारां नूं समस्त संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां ते नाल आप संगतां दे चरणां विच हथ जोड़ बिने बेनती है। कुछ कु जड़ियां बेनतियां हन ओ सकत्र साहब जी आप जी नूं करनी चाहुंदे हन, उन्हां पासों आप जी सरवण करो। उस तों बाद सलोक पढ़ के ते आपां अरदास विच शामिल होना है जी।
1: सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन च नया फल पावना होमें विचों जाए। बड़े खुशियां भरे मौके ते जदों अनंत कारज दी रस्म संपूर्ण हुई है उस विच आप सब नूं लख लख वधाई होए। प्रोग्राम विआह दा चलदा रहना पर उस दे विचकार सेवा दा प्रोग्राम आपां करन लगे हां, क्योंकि सेवा ते सिमरन सिखी दे दो हिस्से ने। गुरु साहब ने सानू दसवंध कढ़न लई सारे सब नूं सदियां तों जद तों साडा सिख धर्म बणिया उदों तों शुरू आ सारियां हमेशा हर नानक गुरु नानक नाम नेवा जिहड़ा दसवंध कढ़दा अपने कमाई चों जिथे उहनां नूं किरत करनी वंड के छकणा नाम जपना तीन सुनहरी असूल दित्ते ने उत्थे वंड के छकण दे विच इह दसवंध आ जांदी है। ते साडे प्रोजेक्ट दो चल रहे ने ऐसे नॉर्थ ते साउथ हाल दो स्टोरी बन रही ने उत्थे उस वास्ते हर विआह दे विच साडी ड्यूटी लगी आ कि असीं ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ $5 $10 ਜਾਂ $20 ਜਾਂ ਕੋਈ 100 ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 200 ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ। ਸੋ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਿੱਤ ਲਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਲਵੇਜ ਹੈਵ ਏ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆਫ ਏ ਹੋਲੀ ਹਿਮ ਫਾਰ ਦੈਟ ਪਰਪਸ ਸੈਪਰੇਟਲੀ then during that time people donate whatever they can and that goes to that project that we have in hand, the building of two stories in the north and south hall. So I appreciate all the your funding that you can do at this time. So let's start that. Aao apan shuru kariye satgur ki seva safla je ko kare jit lae man chinde phal paavna home vichon jaye. Waheguru ji ka khalsa ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤ

सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख देख फते बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणिया दे मान नितानिया दे तान न्योटिया दी उठ सच्चे पातशाह दसों पातशाह का आत्मक जोत धन धन धन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी का पावन पवित्र फुरमान है लख खुशियां पात शाहियां जे सतगुरु नदर करे निमखेक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे मां वाक अनुसार गरीब नवाज। आप जी ने कृपा की अज आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी दे आनंद कारज होए। सुभाग जोड़ी बेटा यू जौन चौ उस पुत्र श्री सुजीन चौ अते बीबी यून ही चौ अते बच्ची जसजीत कौर धनोता सपुत्री सरदार गुरदेव सिंह धनोता बीबी रविंद्र कौर धनोता सच्चे पातशाह जी सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आनंद कारज होए हैं। सतगुरु जी आनंद कारज की मर्यादा नभादियां हुई बेअंत भुला आप जी ने खिमा कर देनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करनी रहमत करनी सुभाग जोड़ी दे सिर ते मेर भरे हाथ रखना ग्रिश धर्म दियां खुशियां खेड़े बख्शिश करके नवाजना कृपा करनी गरीब नवाज। दोहां परिवारां विच आपसी प्रेम प्यार सुभाग दी दात बख्शिश करके नवाजना सेवकां दे सारे कार्ज रास करने गरीब नवाज। सुभाग जोड़ी वालों आप जी ने सुंदर पोशाके भेट किए गए आप जी ने अंगीकार करने लोग परलोक पढ़ते कजने बख्शिश किए भंडारियां विचों कड़ा प्रसादी देख हाजिर है दर प्रवान हुए गरीब नवाज। बेन संगतां ने हाजरियां भरियां तिल फुल भेटावा माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती अते गुरु घर दियां चल रहियां कार सेवा दे निमित्त बेन संगतां ने अपनियां किरत कमाईयां नूं सफलियां करदियां दसवंत भेटा कीता। सतगुरु जी सभनां दी माया सफली करनी कारोबारां विच वाधे पाउणे चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी। हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो से प्यारे मेर जिन्हां मिले आप जी का नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा

असंत मूर्ख अंत घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे फिर संत मलेच मल पाए असंत निंद

कृपा निर्भौ निर्वय अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नान

अंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गल वाए संत पापी पाप असंत मूड़े आए है संत मलेच मल पक्ष है असंत निंदक कर नानक नीच कह क्या वर न जावा के जो तुख पावे सही फरी करा सुना संत नाम गम गम

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच

असंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आल करे फिराए संत मलेश मल पाख असंत निंदक करे पा नानक नीच कह मारे अन जा जो सुख पावे सही कर।

पे जाए है साला जी साला है इतनी नदियां पे बाहर पांचों न जान समुद्र साथ गिरी कुल नौनी अंत न सुनी कहना अंत न करने देना अंत न देखन सुनना।

निर्भउ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैतम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी।

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मलेर माल पाक खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नींद कहे जा मारे न जावा एक जो सुख पावे सही करता सदा सलामत नंदा संत नाम संत नाम राम नाम।

छठ महला पंजवां। सुनो बिनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे, राख पै नाम अपने की करण करावन हारे। पराव जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे रहाव। सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सुवारे, पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। सोठ महला पंजवां। जी जनत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे, अंगीकार कियो प्रभ अपने ना भाव निध पारे उतारे।

सेव कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनाओ अर गाओ रसना गीत रहाव कर सात संगत सिमर माधो हे पतत पुनी पुनीत काल बाल जो पर्यो डोल मुख पसारे मीत आज काल फुन तो एक रस है समझ राखो चीत कह नानक राम पाज ल जाते ओ सरबीत सुठ महला नवा मन की मन ही माय रही ना हर भजे न तीरथ सेवे चोटी काल गही रहाव दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल विख्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत पौते जगहार्यो मानस दे लही नानक कैत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सुठ महला नवा मान रे कौन कुमत तलिनी पर दारा निंदा रस रचियो राम भगत न कीनी रहा मुक्त पंथ जान्यो तै नाहिन धन जोरन को थाया अंत संग काऊ नहीं दीना बिरसाया बंधाया ना हर भजो न गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना काटी माय निरंजन तेरा तै खोज तू दियाना बहुत जन्म भ्रमत तै हार्यो आस्थित मत नहीं पाई मानस दे पाए पधार भज नानक बात बताई सुठ महला नवा मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गण का सी उदरी ताको जा सी उधारो रहाव अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया दुख हरताए विद को स्वामी तय काहे मिसराया जब ही शरण गही कृपा ने गज ग्राह ते छूटा मेहमान नाम कहा।

ज्ञानी कौन उपाय करे, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कौ कैसी, धर्म कौन पुन करई, कौन नाम गुरजा कै सिमरै, भाव सागर कौ तरई। काल में एक नाम कृपा निध जाहे, जपै गत पावै, और धर्मता कै समनाय, नेह बेद वेद बतावै। सुख दुख रह सदा निर्लेपी, जा कौ कैत गुसाई, सो तुम ही मैं बसै निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सुट महला नौवा, माई मैं के बदल को गुसाई, महामोह अज्ञान तिमर, मो मन रहो रिझाई रहाओ। सगल जन्म भरम ही भ्रम खोयो, नया सर मत आसिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निसबासुर, न छूटी अदमाई। साध संग कबहु नहीं कीना, नह कीर्त प्रभ गाई, जन नानक मैं नाह को गुण राख ले हो सरनाई। सुठ महला नवा, माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासुर बिखियन को तावत के विद्रो को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मन, सुन निमक नहीं है बसावै, पर धन पर दारा स्यो रचियो, वृथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो, सो जितने कछ ज्ञाना, काटे पीतर बस्त नरंजन, ताको मरम न जाना। जाबे सरन साध की आयो, दुर्मल सगल विनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मन, काटे जम की फांसी। सुठ महला नौवा, रे न रे साची चेतार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिन सत लगत न बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ये सुख माया के उर्जो कहा गुवार। अजो समझ कछ बिगड़ो नाहन, भजले नाम मुरार, कौ नानक निज मत साधन को, पाख्यो तो एक पुकार। सुठ महला नवा, यह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई रहाओ। दारा मीत पूत संबंधी, सगरे धन सेव लागे, जब ही नेर धन देखियो, नरको संग छाड़ सब पागे। कहो कहा या मन बोरे को, इन सेव ने हो लगायो, दीना ना सगल पै पंजन, जासा को बिसरायो। सुहान पूज्यो पयो न सुदो, बहुत जन्म में कीनो, नानक लाज पग बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सुट महला नवा, मान रे गयो न गुरु उपदेश, कहा पयो जो मुंड मुंडायो, भगवो की नौ पेश। रहाओ सा छोड़ कै झूठे लाग्यो, जन्म का अर्थ खोयो, कार पर पंच उदर निज पोखियो, पास की न्यायी सोयो। राम भजन की गत नहीं जानी, माया हाथ बिकाना, उर्ज रहो बिखियन संग बौरा, नाम रतन बिसराना। रहे हो चेतन चेत्यो, गोविंद बिरसाय औद सिरानी, कौ नानक हर बिरद पछानो, भूले सदा पुरानी। सोठ महला नौवा, जो नर दुख

हर जियो आपे बक्स मिलाए, गुणहीणा में अपराधी पाई, पूरा सतगुर लहर लाए रहा। कौन कौन अपराधी बक्सियन प्यारे, साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारियन पाई, सतगुर बेड़ा चाड़। मनुरह तय कंचन पय पाई, गुर पारस मेल मिलाए, आप छोड़ना मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हो वारी हो वार न पाई, सतगुर को सद बलिहार जाओ, नाम निदान जन दिता पाई, गुरमत सह सुमाओ। बे गुर बिन सहज न उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विचो आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी ससार, प्रेम पदार्थ पाई पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवा अपना पाई, तिन कहो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बखसाए। सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई, तस बिगड़ न लागे कोय। सोठ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरा भाग मिलाए, सदा सुख सुहागणी पाई, अन्न रतिया रंग लाए। हर जी तू आपे रंग चढ़ाए, गावो गावो रंग रत्यो पाई, हर से ती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई, हर आप वसै मन आए। पेर का हुक्म न जाने पाई, साकु लखनी कुनार, मन हटकार कमावनी पाई, विणना वै कूड़ियार। से गाव है जन्मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चे बैराग, अन दिन राते गुण रवे पाई, निरपो गुर लेव लाग। सबना मार जीवाल दा पाई, सो से वो दिन रात, सो क्यों मनो विसारी पाई, जिस दी वड्डी है दात। मन मुख मैली डूमनी पाई, दरगे नाही थाओ, गुरमुख होवे तां गुण रवे पाई, मिल प्रीतम सच समाओ। एत जन्म नहा एत जन्म हर ना चेत्यो पाई, क्या मोदे सी जाए, किड़ी पुमंदी मोहाए, उन पाई विख्या नो लो भाई। नाम समालय सुख वसै पाई, सदा सुख साध शरीर, नानक नाम समाल तो पाई, अपरंपर गुणी गहीर। सोठ महला पंजवां, घर पहला अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साव जग जिनयो पाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, देकर अपनी वत, किन कहिए क्यों देखिए पाई, करता एक अकथ, गुरु गोविंद सलाहिए पाई, जिसे जापै तथ। मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता। रहाओ जाके घर सब किच है पाई, नौनिद भरे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, उचा गमे अपार। जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा पेटिए पाई, शब्द मिलावन हार। सच्चे चरण सरेविय पाई, परम पौ नास, मिल संत सभा मन मांजिए पाई, हर कै नाम निवास। मिटाय अंधेरा ज्ञानता पाई, कमल होवै प्रगास, गुरबचनी सुख उपजे पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोटिया पाई, हो गया सबकी धूर, घट घट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखा सुना हजूर। जिस दिन भी सर पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिया चूर, करण करावण समर्थ हो पाई, सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस भावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासिय पाई, हृदय होवे प्रगास, प्रगट भया प्रताप पाई, मौलिया तरत आकाश। गुर पूरा संतोखिया पाई, ऐ नस लागा पाओ, रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीव्या पाई, ने चल पाया थाओ, जिस प्रतीत न आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहब पाई, हो तिसके बल जाओ, निर्गुणिया रे पालदा पाई, दे निथावे थाओ। रिचक संभाहे सास सास पाई, गूढ़ा जा का नाओ, जिस गुर साचा पेटिए पेटिए पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी न जीविय पाई, सर्व कला भरपूर, सास गिरास न विसर पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रया भरपूर, जिन्ना प्रीत न लगिया पाई, से नित नित मार दे चूर।
ਹੰਚਨ ਲਾਇ ਤਰਾਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਲ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਭਾਈ ਕੀਤੋ ਨੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਲਬੇ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਝ ਬੇ ਨਿਵਰਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਿਆਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਅਨੇਕ ਜੂਣ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਜਿਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਤਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਐ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਏ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ ਕੂੜਾ ਹੋਏ ਕੌੜਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਦੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ ਭੋਗ ਪੁੰਚਾਏ ਭੁਲਾਇਨ ਪਿਆਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ ਜੋਗਰ ਮੇਲੇ ਉਧਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਤੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗ ਮਾਇਆ ਲਾਲ ਚੱਟਿਆ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤਨਾ ਵੈ ਮੂਲ ਜਿਨ ਤੋਂ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧੂੜ ਬਿਲ ਲਾਟ ਕਰੈ ਬਹੁਤੇਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮੂਲ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਢੋਈ ਨਹਿ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਏ ਸੰਜਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤਿੰਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਵਸਣਾ ਜਾਤੀਆ ਪਿਆਰੇ ਕੂੜ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਤਸੰਤੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਅੰਨਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਭਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਤਿੰਨ ਲੰਘਿਆ ਪਿਆਰੇ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਭਰੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਮੈਲ ਮੇਲ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਤਿਸ ਕਾ ਤਾਣ ਤਿਸਰ ਨਾਈ ਢਹਿ ਤੈ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ ਹਲਤ ਪਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਮਸਤਕ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਪਦੀਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਕੋਈ ਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਵ ਸੰਗ ਨੇ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀ ਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਰ ਮੂਨ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ਤਟ ਤੀਰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜੈ ਬਸਿਓ ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਹਰਾਏ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰਾਏ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ ਕਨ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਵਰਗੈ ਵਰ ਬਹੁ ਬੇਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬੋਰ ਪੇ ਨਹਿ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੋਤ ਖਟਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ ਹੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਹਿ ਮਿਲੀਏ ਜੁਗਤਾ ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਚੌਰਾਸੀ ਏ ਪੀ ਕਰ ਰਹਿਆ ਵੱਡੀ ਅਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਰ ਗਹਿਆ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਦਨ ਚੋਵਾ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੀਰ ਸਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਤੇਰੋ ਸੇਵਕੇ ਰੰਗ ਮਾਤਾ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਏ ਮਨ ਰਾਤਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਗੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਰਠ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ ਦੰਦੀ ਮੈਲ ਨ ਕਤ ਮਨ ਜੀਬੈ ਦੰਦੀ ਮੈਲ ਨ ਕਤ ਮਨ ਜੀਬੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਸੁਰੈ ਪੀਐ ਭੈ ਵਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਿਸੰਗ ਪਰ ਹਰ ਕੱਪੜ ਜੇ ਫਿਰ ਮਿਲੈ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਵੈ ਫਿਰ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸਿਗਾਰੀ ਨੌ ਮਨ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੋਏ ਦੁੱਖ ਸੱਸੂ ਕਾ ਡਰ ਕਿਸ ਜੇ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭ ਸੱਚ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋਰਠ ਧਾਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਟੰਡੋਲੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ
रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन नत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष करता सिरजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप या भोगन हारिया सब तेरा शब्द वरताए वो पावन हारिया हो गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हो मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे पाए पूरे सदगुर राख ली अपने पन्ने पाए जग जलता नदरी आया गुर कै सद सुभाए सब रते से शीतल पाए नानक सच कमाए महला तीजा सफल हो सतगुर सेव्या धन जन्म प्रमाण जिन्ना सतगुर जीव दया मोया न विसरै सोई पुरख सुजान कुल उधारे अपना सो जन होवै प्रमाण गुरमुख मोए जीव दे प्रवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए न आखिए जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेवर नाम त्याई है सत्संग साधु लग लग हर नाम समाई है हा तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हो गोला लाला तुद मैं हुक्म फुरमाई है हो गुरमकार कमावा जी गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जी करता आप लिखियास मोह टगौली पाई अन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोह आस जिन्नी गुरमुख नाम न चेते उसे बैण न मिलनी पास दुख लाटा बहुआत कणा पुत कलात न साथ कोई जास लोकां विच मोकाला हुआ अंदर उबे सास मन मुखानो को न विसई चुक गया विसास नान गुरमुखानो सुख अगला जनांतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सजना जे गुरमुख मिलाए सुभाए सतगुर का पाणा आंडन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सजना आखिए जे अभिमान करे बेकार मन मुखाव सुवारती कार जना सकै सुवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कहे आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगिया फरिया वह जाया जिना हरे आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा समा सदा सदा कुमाया श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विणदंता जग खाया मन मुखा दे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम चित लाया बिणनावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या ने फल जन्म गवाया सुखदाता मन न वसाया नानक नाम तिन्ना को मिलिया जिनको धुर लिख पाया महला तीजा घर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया जो कस्तूरी मिर्ग न जाना भ्रमदा भरम भुलाया अमृत अद्विक संग्रह करता आप खुआया गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साध आया सबदे ही ना उपजय सबदे मेल मिलाया बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख गम है कहो केत बिद पाइय तिस रूप न रेख दृष्ट कहो जन कहो त्याई निरंकार निरंजन हर गम क्या कह गुणया कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सर मार्ग पाई है गुर पूरे वेखा लिया गुर सेवा पाई है श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़ी है रत न भोरी डे जियो वञै चौखनी है सच्चे सदड़ै ने नानक मेल न चुकई राती अतै डे महला तीजा सज्जन मैंडा रंगुला रंग लाए मन ले जो मजीठा कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग न उतरै ब्याह न लगै के पौड़ी हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सिसवार सिर तंदै लाएदा इकना भक्ति लाए काप खुआएंदा इकना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाएदा श्लोक महला तीजा
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲਾਏ ਜੇ ਕੁਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੈ ਵਿਚੋ ਜਾਏ ਬੰਧਨ ਤੋੜਾਏ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਾਭ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਜਿਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜਾਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ ਘਰ ਘਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਸੱਖੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਇਹ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਆਵਈ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਭੀਖ ਧਾਰੀ ਭੀਖ ਕਰ ਸਕੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਹੋ ਮੈਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਭੈ ਭਈਐ ਮਨ ਵਸੁਆ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਸਚ ਰੁੱਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤੰਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਸੇ ਬੱਧੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ ਫਿਰ ਮਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਰੋਗ ਨਾ ਛੋੜਾਏ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਖਸ਼ ਲਾਏ ਸਭ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫਿਰੇ ਤਿੰਨਾ ਠੋਰ ਨਾ ਠਾਓ ਜਿਉਂ ਛੁੱਟੜ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੇ ਦੋ ਚਾਰਨ ਬਦਨਾਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਪੌੜੀ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਤ ਮੁਰਾਰ ਸੇ ਭਵ ਜਲ ਤਰ ਗਿਆ ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦੇ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਪ ਲਿਆ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸਹੀ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤੁਧ ਮਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਗੁਰੰ ਮੁਖ ਪਰਮ ਭਉ ਗਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਐ ਸਦਾ ਰੱਖੀਐ ਉਰਧਾਰ ਇਹ ਮੁਦਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੁ ਬੁਝਸੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਧੁਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਆ ਵਿਛੋੜੇ ਸੇ ਵਿਛੁੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ਪੌੜੀ ਬਹਿ ਸਖੀਆ ਜਸ ਗਾਵੈ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਓ ਨਿਤ ਹਰ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨਾ ਕੋ ਵਾਰੀਆ ਤਿੰਨਾ ਹੋ ਵਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹੋ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਣਨਾ ਵੈਸਾ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸਹਿਸਾਰ ਮਨ ਮੋਹ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੈ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੁਸਤ ਧੋਵੈ ਮਨ ਮੋਹ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਬਲ ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਤਿੰਨ ਡਰ ਸੱਟ ਘਤਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕਿਛ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਵਿੰਡਿਠਾ ਕਿਆ ਸਲਾਈਐ ਇੰਦਾ ਅੰਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮੰਨਿਆ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੱਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਾਈਐ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖੱਟਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖੱਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਈਐ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੈ ਕੂੜਿਆਰੀ ਰਜੈ ਕੂੜ ਜੋ ਵਿਸਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵੈ ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਾਧ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌ ਆਇਆ ਇਹ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ
सतगुर अगै टाए पाओ सब किस जाने जान आसा मनसा जलाए तू होए रहो मेहमान सतगुर कै भाणे पीछले तंदर कै पावे मान नानक जी नाम न चेतनी तिन तिग पैन पैनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोड़ने आवे कीमत कह न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवै गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा दिखाई बहु बहु बिद भात कर कोई बुझे बुझन हर अंतर विवेक कर सो बुझे विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक है विचारा गुरमुख हर सत हर श्लोक महला तीजा परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानै गुरमुख होए सो पाए करे अपना आप पछाणै गुरप्रसादी जीवत मरै तां मन ही ते मन मानै जिनको मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथै ज्ञानै महला तीजा गुरमुख चेतन लायो अंत दुख पौता आए अंदरो बारो अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए सो जो रते हर नाए जिन गुर कै सब सलाया हर स्यो रह समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो भई ना धन पल्लै पाए पढ़ थके संतोख न आयो आन दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुके ना संसा विच जाए नानक नाम विहुनिया मोका लै उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मेल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाई गुण सांझी तिन स्यो करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वीर पड़े जुगचार त्रैगुण माया मूल है बिछो मैं नाम विसार पंडित भूले दूजै लागे माया कै व्यापार अंत तृष्णा भुख है मूर्ख भुख्या मोए गुवार सात गुर सेविया सुख पाया सच्चा शब्द विचार इंद्रो तृष्णा अंदरो तृष्णा भुख गई सच्चा नाय प्यार नानक नाम रते सहजे रजे जिना हर रखिया उरतार महला तीजा मन मुख हर नाम न सेव्या दुख लगा बहुताया अंतर ज्ञान अंधेर है सुध न काई पाए मन हट सहज न बीजियो भूखा की अगै खाए नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए नान गुरमुख मिले वड्याईया जय आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावै खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर भूले सार पावनी जो गुरमुख चखै साध सा तृप्तावनी गुण गावै प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवै आप दयाल सत गुर गुरु बिल बुलावनी श्लोक महला तीजा हस्ती सिर जो अंक सहै अहरण स्यों ज्यों सिर दे मन तनिया गहरा कै उभी सेव करे यूं गुरमुख आप निवारी आए सब राज श्रेष्ठ काले नान गुरमुख बुझिया जाए आपे नदर करे महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रमाण नानक उधार अपना अंदर कै पावै मान पौड़ी गुरमुख सखिया सिख गुरु मेलाइया एक सेव कृपा सिख गुर कर लाइया जिन्ना गुरु प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया गुर सिखा इको प्यार गुर मिता पुता पाइया गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया श्लोक महला तीजा नानक नाम न चेतनी अज्ञानी अंदले अवरे कर्म कमाहे जामन दर बदे मारिया प्रविष्टा माए पचाए महला तीजा नानक सतगुर सेवै अपना से जम सच्चे प्रमाण हर कै नाम सुनाए समाए रहे चूका आवन जान पौड़ी धन संपै माया संचिया अंत दुखदाई कर मंदर मैल सवारी है कि साधन जाई हर रंगी तुरै नित पालिया कित कामना आई जन लाभ हो चेत हर नाम से अंत होए सिखाई जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा बिन कर्मै नाव न पाईऐ पूरा कर्म पाया जाए नानक नदर करे जे अपनी तां गुरमित गुरमत मेल मिलाए महला पहला एक दजा एक दबिया एक ना कुत्ते खाए एक पानी विच सट जाए एक पी फिर हसन पाए नानक एव न जापई कित्थे जाए समाहे पौड़ी
तिनका खादा पैदा माया सब पवित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर में सराई सब पवित है, जनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते, तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है, जिनी गुर सिख सिख साध संत चढ़ जाते, तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है, जो बोले हर हर नाम हर साते, जिनका पोता पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाते। श्लोक महला तीजा। नानक नाम पुथिया हरत पलत सब जाए, जब तक संयम सब हेर लया मुठी दूजा पाए, जम दर बदे मारिय बहुती मिले सजाए। महला तीजा। संतां नाल वैर कमांदे दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जमे वारो वार, तृष्णा कदे न बुझई दुबदा होए कुवार, मोका लै तिना निंदका तित सच्चे दरबार, नानक नाम विहुणिया ना उरवार न पार। पौड़ी। जो हर नाम ते आएंदे से हर हर नाम ते मन माही, जिन्ना मन चेते कर दया तिना एक समिन दूजा को नाही, से ही पुरख हर सेम दे जिन तुर मस्तक लेख लिखाही। हार के गुण नित गांदे हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमुखा गुरपुर हर नाम समाही। श्लोक महला तीजा। सात गुर की सेवा गाखड़ी सिर दी जाए आप गुवाए, सब मरै फिर ना मरै शब्द मरै फिर ना मरै, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसै पारस होवै सच रहै लिवलाए, जिस पूर्व होवै लिखिया ते सतगुर मिलै प्रभ आए, नानक गणतै सेवक ना मिलै, जिस बख्सै सो पवै थाए। महला तीजा। महल कु महल न जाननी मूर्ख अपने सुआए, सब चीना ता मैल है ज्योति ज्योत समाए, सदा सच्चे का पो मन वसै ता सबा सो जी पाए, सतगुर अपने घर वरतदा आपे लै मिलाए, नानक सतगुर मिलिया सब पूरी पई जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी। धन धन भाग तिना भगत जना जो हर नाम हर मुख कहते आ, धन धन भाग तिना संत जना होर हर जो हर जस श्रवणी सुनते आ, धन धन भाग तिना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया, धन धन भाग तिना गुरमुखा जो गुर सिख लै मन जिणतिया, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के जो गुर चरणी सिख पड़तिया। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म त्रहे एक शब्द लिवलाए, नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिराए, जो हर हिरदय सदा वसाए बिन सतगुर नाउ न पाई है बूझो कर विचार, नानक पूरा भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार। महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरधा है मन मुख कृष्णा भुख न जाए, गुरमुख शब्दे रत्या शीतल होए आप गवाए, अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख न लगे आए, नानक जे गुरमुख कर है नानक जे गुरमुख कर है सो प्रमाण है, जो नाम रहे लिवलाए। पौड़ी। हो बलिहारी तिनको जो गुरमुख सिखा, जो हर नाम त्याय दे तिन दर्शन पिखा, सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा, हर नाम सलाही रंग स्यो सब खिलविक क्रिखा, तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे जिथे मेरा गुर धरे विखा। श्लोक महला पंजवा। श्लोक महला तीजा। गुर बिन ज्ञान न होवै ना सुख वसै मन आए, नानक नाम हुणे मन मुखी जसन जन्म गवाए। महला तीजा। सिद्ध साधक नावै नो सब खोज दे थक रहे लिवलाए, बिन सतगुर किने न पायो गुरमुख मिले मिलाए, बिन नावै पहनन खान सब बाद है, तिग सिद्धि तिग करमात सा सिद्ध सा करमात है, अचिंत करे जस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै इहा सिद्ध इहा करमात। पौड़ी। हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावे हर गुण चिंता, हर कीर्तन करे हर जा सुने तिस कवला कंता, हर दाता सब जगत भिखारिया मंगत जन जनता, हर देवो दान दयाल होए विच पाथर क्रिम जनता, जन नानक नाम ते आया गुरमुख तनवंता। श्लोक महला तीजा।
पढ़ना गुड़ना संसार की कार है अंदर तृष्णा विकार हो मैं विच सब पढ़ सके दूजे भाई खुवार सो पढ़िया सो पंडित बिना गुर सत करे विचार अंदर को जै तत् लहै पाए मुख द्वार गुण निदान हर पाया सहज करे विचार धन व्यापारी नानका जिस गुरमुख नामे आधार महला तीजा मेण मन मारे कोई न सि जाई वेखो को लिवलाए भीख धारी तीर्थी भव थके नाए मन मारिया जाए गुरमुखे मन जीवत मरै सच रह लिवलाए नानक इस मन की मलियों उतराए हो मैं सब जलाए पौड़ी हर हर संत मिलो मेरे भाई हर नाम दे ढावो एक किनका हर हर सिंगार बनावो हर जन हर कापड़ पहरो खिमका ऐसा सिंगार मेरे प्रभाव है हर लागे प्यारा प्रेमका हर हर नाम बोलो दिन राती सब किलबे काट एक पलका हर हर दयाल हो वै जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याओ खनली धोती उजली ना हो वही जैसो धोवन पाओ गुर प्रसादी जीवत मराए उल्टी हो वै मत बदलाओ नानक मैल ना लगई ना फिर जो नी पाओ महला तीजा चौ जुग कल काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर की फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नान गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्च रहे हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग वाते दुखा कान जिन्ना सास गिरास न विसरे से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराधे तिन चुकी जमकी जगत कान श्लोक महला तीजा रे जन उथार दबियो रे जाने उतार दबियो सुत्या गई विहाय सतगुर सतगुर का शब्द सुन न जाग्यो अंतर न उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुरकार न कमाए जगत जलंदा डिठ मैं हो मैं दूजा पाए नानक गुरसरण आई उबरै सच मन शब्द त्याए महला तीजा शब्द रते हो मैं गई शोभा बंटी नार फिर कह भाण सदा चलै ता बनिया सिगार से सुहावी सदा फिर रावे हर पाया हर वर पाया नार ना हर मरै ना कदे दुख लागे सदा सुहागण नार नानक प्रभ मेल लई गुर कै हित प्यार पौड़ी जिन्ना गुर को प्याय अपना ते नर बुरियारी हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हथियारी ओ कर कर फिरा एक शुद्ध मन ज्यो धरकट नारी वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेला संगुर दया कर गुर को बलिहारी सलोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजाए फिर दुख न लग गया ए जमन मरना मिट गया काल का किछ न बसाए हर से ती मन रव रया सच्चे रया समाए नानक हो बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए महला तीजा बिन शब्द सुध न हो वही जे अनेक करे सिगार फिर की सार न जाने दूजे पाए प्यार साख सुध साख लखनी नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उचरा हर लाहा लैणी जो जप दे हर हर तिनसरा तिन्हों कुरबैणी जिन सतगुर मेरा प्यारा रा दया तिन जन देखा नैणी हो वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन में लिया सैणी श्लोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है हर दासन को मित हर दासन कह वास है जो जनती कह वास जंत हर के दास हर ध्याय दे कर प्रीतम स्यो ने हो कृपा कर कह सुनो प्रभ सब जग में वरसै में हो जो हर दासन की उस है सा हर की वड्याई हर अपनी वड्याई पाउंदी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याय दा हर हर जन एक समान जन नानकार का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन सच है तिस बिन रहन न जाई सतगुर मिले ता पूरा पाई है हर रस रसन रसाई पौड़ी रहन दिन सरबा तू है ही गावना जी जंत सरबत नाओ तेरा ध्यावना तू दाता दातार तेरा दिता खामना भगत जना कै संग पाप गवावना जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना श्लोक महला चौथा अंतर ज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कप सब कपटो कर जाना कपे खपे कफाई सतगुर का पाणा चेतना वाय अपना
ਸਵਾਇ ਫਿਰਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਸਮਾਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਨੁਆ ਥਿਰ ਨਾਹੇ ਅੰਦਿਨ ਜਲ ਤਰਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋ ਮੈਂ ਖਪੈ ਖਪਾਹੇ ਅੰਤਰ ਲੋ ਮਹਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਤਿਨਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਹੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਕਬੋ ਨਾ ਪਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਮਰ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਸਹੀ ਵਿਚੱਖਣ ਸਾਚਾ ਜੇ ਗੁਰਚਰ ਸਹੀ ਵਿਚੱਖਣ ਜੰਤ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਭੈ ਪੁਨੀ ਧਰ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਾਤ ਆਏ ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਨਾਮੋ ਚਿਤਵੈ ਨਾਮ ਪੜਾਏ ਨਾਮ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਚਿੰਤਾ ਗਈ ਬਿਲਾਏ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਉਪਜਾਏ ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਮੋ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਾਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਭਰਮ ਭਰਮਿਆ ਘਰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੈ ਫਕੜੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਗੈ ਭਇਆ ਉਸ ਅਰਲ ਬਰਲ ਮੋਹ ਨਿਕਲੈ ਨਿਤ ਝੱਗੂ ਸੁੱਟਦਾ ਮੂਆ ਕਿਆ ਹੋਆ ਕਿਸੈ ਹੀ ਦੈ ਕੀਤੈ ਜਾਂ ਧੁਰ ਕਿਰਤ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਏ ਤਿੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੂੜ ਬੋਲੈ ਕਿਸੈ ਨਾ ਭਾਵੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਏ ਤਿੱਥੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੂੜ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਭਾਵੈ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਸੰਤੋ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੈ ਦਰ ਸਾਚੈ ਅੱਗੋ ਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ ਪੌੜੀ ਗੁਰ ਸੱਚੇ ਬੱਧਾ ਥਿਓ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਰੱਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਲ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣ ਸਮਹਤੇ ਗੁਰ ਕਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰਜਾਈ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ਅਬ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਪਾਂਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਹਾਸਲ ਤਦੇ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਆ ਹੰਡੈ ਜੀ ਕਮਾਂਦੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮਾਤ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੇ ਪੌੜੀ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਸਾਠ ਬਹਾਲੀਓਨ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਏ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਲੀਓਨ ਆਪੇ ਜਨਤੋ ਪਾਏ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੀਓਨ ਦਾਸ ਰੱਖੇ ਕੰਟਲਾਏ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਓਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਜਨਾ ਆਨੰਦ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਲੀਓਨ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਮਨ ਅਰਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਲਾ ਪਾਏ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਏ ਹਉ ਹਰ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਸਦ ਜਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਅਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨ

जो नलनी प्रम सुआ वेद प्राण सब मत सुन के करिए कर्म की आशा कालग्रत सब लोग सियाने उठ पंडित में चले निराशा मन रे सर्व न एक काजा तजु न रघुबत राजा रहो बानखंड जाए जोग।

हमरा परों गया पौ पागा जब राम नाम चित लगा बाजीगर डंक बजाई सब खलक समा से आई बाजीगर स्वांस केला अपने रंग रवे केला कसनी कै परना जाई सब कद कतर ही लुकाई जाको गुरमुख आप बुझाई ताकि हृदय रहा समाई पुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी कै कबीर रंग राता मिलो जग जीवन दाता जाके निभंग दूध के ठाटा समुद बिलोबन को माटा ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेट गो छाड़ छाज तुआरी चेरी छू राम न करत पसारा जग जीवन प्राण अधारा राओ तेरे गले सोख बग पेरी सू कर कर मैया फेरी तू अजू न चेत चेरी तू जम्ब पपी है हेरी पब कर्ण करावन हारी क्या चेरी आद बिचारी सोई सोई जागी जिस लाए तित लागी चेरी तैस मत कहाँ ते पाई जाते भ्रम की लीक मिटाई सो रस कबीरे जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज न जिया जाई जो मिले सकाल अकाई सद जीवन पलो कहाई।

बिन जीवन नाही। अब क्या कभी ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कासे कुमकुम को कम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता इक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाटिक जन दाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मूका, और न पै जाना चूका। जो जीवन मरना जाने, तो पांच साल सुख माने। कबीरे सो तन पाया, हर पेट से अब मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिले हो सोई। हर का नाम न जब गवारा, क्या सोचे बारम्बारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस गोचर लिया। बस गोचर पाई, कट दीपक रहा समाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोक न पतीजे, न पतीजे तो क्या कीजे। हृदय कपट मुख ज्ञानी, टूटे कहा बलोबस पानी। काया माज से कौन गुना, जो काट पीस रह मलना रहाओ। लोकी अक्षर तीर्थ नाई, कोरापन सो ना जाई। कह कबीर बिचारी, पव सागर तार मुरारी। करो सोठ एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। बौ पर पंच कर पर तन ल्यावे, सतदारा सुतदारा पे आन लुटावे। मन मेरे पूले कपट न की जाए, आतन बेरा तेरे जी है पहली जय। राव छिन छिन तन छीजे, जरा जनावे। तब श्री ओक कोई पानी न पावे। कैद कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की न जपे सवेरा। संत हो मन पवने सुख बनया, फिर जोग प्राप्त गनया। राव गुर सिखलाई मोरी, जिस मिर्ग पड़त है चोरी। मूल लिए दरवाजे, बाजी ले अन दवाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल बेटिया उबा करया। कोक वीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। राग सोठ भूखे भक्त न की जय, जह माला अपनी ली जय। ओ मांगो संत नरेना, है नाई किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आपन देव तले वो मंगे राव। दो शेर मांगो चूना, ओ क्यों संग लूना। आद शेर मांगो दाले, वो को दोनों भक्ति वाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अब्र तुलाई। ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्त करे जन खींदा। मैं नाही कीता लभो, इक नाव तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया। राग सोठ बाणी भक्त नाम दे जी की कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा। तो जन तीरज पावा, आज सुमाई लो रे सतगुर पीटिले देवा। राव जय चिल मिलकार दिसंता, ते आनंद शब्द भजंता। जोसी जोत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल सही। मेरे नाही दूर, निज आत्मे राया पर पूर। जय अनहत सूर उजियारा, जय दीप जले चंचारा। प्रसादी जानया, जन नामा सहज समानया। कर चुकसा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा। कापे छान चबाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दे हो। मुको पीढ़ी दे हो बचाई हो।
ਭਾਈ ਬੇੜੀ ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਈ।

को ईशान चबावे हो, लोग टंब सहु से तोरा तो आपन बेड़ी आवे हो। ऐसो बेड़ी वरण न साको सब अंत सब टाई हो। गूंगे गूंगे मां महा अमृत रस चाखिया तुझे कहना जाई हो। बेड़ी के गुण सुन री भाई जल बन श्रू सा प्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी लंक बपीखण आप्यो हो। सोठ कर तीजा अनमड़िया मंदल बाजै, सावन कण हर गाजै। बादल बिन बरखा होई लुथत बिचारे कोई। मुखो मिलो राम सनेही ये मिल ऐ देह दुस देही। राव मिल पारद कंचन होया मुखमन सा रतन पुरोया। निज भाव पया भ्रम पागा गुर पूछे मन पतियागा। जल पीतर

निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूरे आर गए फिर अशांत मलेच मर भग खाए अशांत निंदक करें पा नानक नीच कहे विचार मारे न जावा जो कुछ पावे सही करी का

सोहन मन प्रवान नदरी गर्म सवैन कच्छ पाई उठ पाए नानक कैण कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का कित्ते पौन पानी वह संतर कित्ते

निरपक्ष निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख मूड़े आर मरे फिर अशंख मलेच मल पाए अशंख निंदक।